दीनी कहूँ फूल राजा हो बैठा हो कहूँ सिमट पय शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचम पव आदि जगाद स्वरूप सजम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख अबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुह मरे।

रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुट छाह छव सक न कोई। एक बार जिंत मैं संभारा, काल पासते ताहु बारा। जिन नर नाम तिहारू कहा, दर्द दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो बारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को छ करता।

नित नित रख और धारो तब संसार चरण लग तरी जाए सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा।

जावे। कदी साईं मियां मीर ने यह पंक्ति पढ़ी तो गुरु अर्जन देव पातशाह नूं पुछिया, महाराज तुहाडी बाणी दे विच लिखिया है, यह सच है? इदां भी हो सकदा भी प्यार दे विच तन मन अर्पण करदे आ कटिया जावे, अग विच साड़िया जावे, इहदे अर्थ मैं किदां करां, मैनूं अर्थ करने नहीं आउंदे। पातशाह कहिंदे, साईं जी इहदे अर्थ तुसीं देखोगे, इहदे जिहड़े अर्थ ने तुसीं अखां दे नाल देखोगे। माफ करियो, असीं ते केवल अखरी अर्थ करदे आ। गुरु साहिबाना ने, गुरु के सिखां ने अपने जीवन दे विच गुरबाणी नूं कमा के अर्थ कीते आ। एक हुंदे ने अखरी अर्थ करने, अखरी अर्थ ते जिहड़ा मर्जी टीका पढ़ांगे कर देवांगे, पर जीवन दे विच कमाउणा इह बड़ी वड्डी खेड है। इह कोई विरला ही कमा सकदा है। बहुतात धर्म की दुनिया में बाहरमुखी गल्लां हुंदियां ने, पर जिहड़ी अंदरली खेड है इह विरलियां दे हिस्से विच आउंदी है। ते जिस वक्त सतगुरु जी तत्ती तवी ते बैठे आ ना उबलदी देग विच, सीस दे विच गर्म रेत पाई गई, उस वक्त साईं मियां मीर फिर लाहौर की धरती ते आए सी सतगुरु जी दे कोल। ते जदों महाराज जी नूं देखिया, नेत्र भर गए, मन अंदरों भर गया है। ते सतगुरु कहन लगे, साईं जी आ हुण आ अर्थ जिहड़े ने, जिहड़ी पंक्ति दे अर्थ तुसीं कदी पुछे सी ना, अज अखां दे नाल देख लो वी बाणी दे अर्थ की आ। साईं मियां मीर जी दे हथ जुड़ गए, तत्ती तवी ते बह के सतगुरु उस अकाल पुरख दे प्यार दे विच इन्ने समर्पित ने, तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई।

करियम करियम करीम बोल रही में चातर चक्रवर्ती चातर चक्र पुगते सूर्य शुभम सर्वदा सर्वजुगते

संबत 1700 पण जाय अर्ध सहस फुन तीन कह जाय। भाद्रव सुदी अष्टमी रवर तीरु तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जबते तुमरे तबते को अंक त्रे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक माते एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री असमान कृपा तुमरी करू मैं न कहो सब तो हे बखानियो दोहरा।

और जिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ तलाएंदा आपे देवड़ियां ही आपे कर्म कराएंदा वड्डो हो वड्डा वड्डा मेदनी

नहीं रह जांदी कोई कामना कोई खिच तीखन बिरती क्रोध आदक मन बेसराओ मन टिका विच आ जांदा है किदा आया इन्हें कीते करोड़ा जाप ते ताप ओने किते हर के नाम की वडियाई गुरमुख नाम निमख हृदय वसा कहणगे पहला बरकतां दसदे ने सौ सौ एकांती जिस हृदय थाए मोनी होए बैठा एकांत हृदय कल्पन गठ भी क्या मारे मोनी होके बोलना नहीं एकांत विच बह गया पर हृदय विच कल्पना गंडियां पईयां ने मन विच तो एक तो बाद दूजी कल्पना फिर दूजा संकल्प एकांती हो ही है एकांत वासुदा जी का मन रे हिरदा थां विच आ गया शांत हो गया मन सो एकांती जिस हृदय ठाए जिदा मन एकांत हो गया भावे वह किरत करी जांदा है ट्राला चलाउंदा है टैक्सी चलाउंदा है आप शरीर विराम विच नहीं है शरीर तुरिया फिरदा है किरत करी जांदा है कम काज करदा है पर जे मन विच वाहिगुरू का नाम है गुरु का गुरमंत्र है मूल मंत्र है गुरु दे सन्मुख है मन ते तन सो एकांती धन भी गुरु का समझदा है दसवंध कढ़दा है कोई धन की मेर नहीं है कोई एकांत वास है सो एकांती जिस हृदय ठाए धन भी चंचल करदा मन जे चंगे पासे ना लगे परपकार दे तो दसवंध ना निकले बहुता इकट्ठा करी जा एदा भी सिमरन हुंदा धन दा चेता ही आई जांदा प्रॉपर्टी दा ही फिर भी टिकदा नहीं है ता ही क्या तन मन धन गुरु नूं सौंपना है एदी मेर छड्डनी है अपनत छड्डनी है ममता दे विच्चों बाहर होके निकल के जीना है गुरसिख ने गुरमुख ओही है जो ममता दे विच्चों बाहर होके जींदा है सब कुछ दे विच रहिंदिया होया ता महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे बिसराम मन विच एकांत रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान होर की बख्श रिधियां गुप्त खजाने आदि रिद्धि हुंदी अन्न दी अतोटता होनी किसी तरह की तोट ना होनी पंज सेर अन्न साधु महात्मा अठ दिन वरता देंदे सी इहनूं रिद्धि किहा है पंज सेर अन्न अठ दिन वरता देना मुकना ही ना भावें हजारा बंदे आके छक जान रिधियां ने बुद्ध सोहनी बुद्धि आत्म विछैणी ऊतम मत उच्ची मत मन नीमा बुद्ध शुद्ध बुद्धि इहों कह लईए आत्मा दे विछे दा निर्णा करन वाली रिद्ध बुद्ध ये भी बख्शिश हुंदी है सिद्ध सिद्धियां अठारह तरह दियां सिद्धियां ने खजाने ने अनमा लगमा गरिमा महिमा बहुत तरह दियां अठारह तरह दियां अणु जिन्ना छोटा जा हो जाना अणु जिन्ना बरीक सूक्ष्म दिसना ही ना दूजे ये सिद्ध लोग इसे तरह करते गुप्त हो जाते जिथे मर्जी बहुत अणु सरों के दाने जिन्ना वड्डे हो जाना गरिमा पहाड़ जिड्डा वड्डा हो जाना बना लेना अपने आप भारी बना लेना लगमा छोटा जिहा बना महिमा धरती वांग सौ अठारह तरह दियां सिद्धियां ने यह भी आउंदियां ने नाम दियां दासियां ने नाम जप जिहदे हिरदे विच नाम है उहदे सामने आके खड़ो जांदियां ने नाम दियां दासियां ने पिछे पिछे लगियां फिरदियां ने सानूं वरत लाओ की चाहीदा सानूं वरत लाओ रब दे प्यारे हो रिद्ध सिद्ध नावै की दासी गुरु अमरदास महाराज जी ने वे कहा सी के नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिरह

चार वर्ण चौहान के मर्दन खट दर्शन कर तलीरे सुंदर सुगुण स्वरूप से आने पंचों ही मोए चलीरे जिन मिल मारे पंच सूर भी ऐसो कौन बलीरे जिन पंच मार